दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो जात्यो कौटी बदला कातूरी को गाहक आयो लाद्यों का निर्देश जिबा आयो लाभ लापन के ताई आयो लाभ लापन के ताई मोहन ठगौरी सो उलझ पा मोहन ठगौरी सो

उस गोविंद दे गुण नहीं गाए, जन्म बिरथा गवा लिया, ओदा सिमरन इस तरह कर जिस तरह मच्छी

जवानी नू कहंदे ने जवानी एवें चली गई तेरे इस शरीर नू इस जवानी नू बुढ़ेपे ने काबू कर लिया बुढ़ेपे ने जीत लिया हाली भी तू सिमरन नहीं करदा तेरी उम्र बीतती जा रही है।

सारे सुख देने वाला एक कोई और आम है, कोई और नहीं। ओदा सिमरन कर तेरी गत हो जाएगी।

लोको इस शरीर पंजा तत्ता दा बने है अते जिसने ए जीव बनाया है उस दे विच ही आखिर नूं समा जाणा है।

ना दुख दा दुख, ना जिदे विच लोभ है ना अहंकार है भाई, ओहो इंसान भगवान दी मूर्ति।

एक आदमी आया, उत्ते शाल दे गया, ठंड दा वेला सी, कीमती शाल मिलिया पर कोई खुशी नहीं। एक आदमी आया, उत्तु शाल ला के लै गया ते दुख नहीं कीता। एक आदमी आया, प्रसादे दा थाल अगे रखिया, खान लगे ने। एक होर आदमी आया, वो अगों थाल चुक के ते आप खा गया, भोजन आया

अपनी जीव दे नाल उस गोबिंद दे गुण गाओ, कन्ना दे नाल उहदा जस सुनो, ते फिर भाई तुसी जमा दे वस नहीं पवो।

हर रोज दिन रात माया वास्ते इंसान भटकता फिरता है, पर करोड़ों दे विच कोई विरला इंसान है जिहड़ा परमेश्वर दा

तेज बलन दे नाल पानी उबलदे ते बुलबुले उठदे ने पानी ते। गुरु साहिब जी कहंदे ने भाई जिस तरह ओ बुलबुले उठदे ने पानी दे ते खत्म हो जांदे ने, इस तरह ही इस संसार की रचना भी इस तरह।

बचपन जवानी बुढ़ेपा तेन अवस्था समझ के भजन तू बगैर तीनों अवस्था एवं गवा ली भजन तू बगैर बिरथिया नहीं।

इंसान सोचता कुछ हो रहा है पर होंदा कुछ हो रहा है। सलावां करदा रह जांदा है ते ओदू पता लगदा है जदू जमा दा रस्सा गल

झूठे मान क्यों कर दे, जगत नु सुपने दी तरह समझ, कुछ भी तेरा नहीं। गुरु नानक ए गल सच्ची कहंदे, करदा मालिक सारी उम्र तिया पुत्रा दी पालना करदे, पाप करके कमाई करदे, दिन रात भजो फिरदे माया वास्ते। जदू मरदे वेड़े विच पिया हुंदे, फटे ते पांदे ने, जिन्ना तिया पुत्रा दी पालना की थी, फिर ओही कहंदे ने एदियां जेबां फोड़ लो, घर दियां चाबियां तां नहीं जेब विच, किधरे माया वाला बटुआ तां नहीं पाया, जे पाया है तां कढ लिया, हाथ देख लो कोई सोने दी अंगूठी तां नहीं पाई, कड़ी तां नहीं पाई, जे पाई तो वह भी ला ली, जिस चंगा सूट पाया तो वह भी ला लेंदे ने। घर दा मालिक एक कफन पा के उही तिया पुत्र लैके तुर पैंदे ने, शमशान घाट लै गए। जे कफन चंगा है ते कई वारी साड़न वाला वह भी ला लेंदा है, माड़ा जा कफन रह गया ते फिर अग कहंदी भाई आया ते नंगा सी, ये कफन कित्थे लै चले है। वो कफन अग सांभ लैंदी, शरीर भी नाल नहीं जांदा। ते गुरु साहब जी कहंदे ने भाई तू जिन्ना वास्ते पाप करदा है किसे ने भी तेरा साथ नहीं देना, उन्हां ने तेनू नंगा करके घरों बाहर कढ़ना है, क्यों झूठे मान करदा है।

बंधन पै गए, कुछ भी उपाय नहीं हो रहा। ऐ परमेश्वर हुण तेरा ही आसरा है, मेरी रखिया कर, जिवें तंदुए तू गज हाथी दी तू रखिया कीती सी।

जिन्हें दरगाह विच तेरी सहायता करनी इस माया ने धन पदार्थ ने किसी ने भी तेरा साथ नहीं देना। एक परमेश्वर का सिमरन है जिन्हें तेरी सहायता करनी ता पाई उस गोबिंद दे गुण गा ताकि तेरा जिहड़ा जन्म

अगला सवाल कि ये भोजन नाम रस वाला किवें छकिया जांदा है, किवें पीता जांदा है। हुण भोजन भी मिल गया, पता भी चल गया भोजन कित्थे है, ये भी समझ आ गई भोजन बड़ा श्रेष्ठ, पर छकिया किवें जांदा है, किवें पीता जांदा है, उहदी जुगत दसदे ने।

सुंदर लोकी कपड़े पाते ने, चंगे तो चंगे कपड़े पाते ने, पर सतगुरु कहते हैं सब तो चंगा कपड़ा केड़ा है, जिस नाल पत रह जाए। जे कपड़े पा के भी साड़ी बेपत्ती हो रही है, फिर चंगा कपड़ा केड़ा है जिस नाल पत रह जाए।

कोई रसना खाली ना रहे। पहला दास बोलेगा, दूसरी बार मेरे वीर, तीसरी बार मेरियां पैना। दो ही पंक्तियां बोल के समाप्ति।

रूप होने के नाते इको ही हैं, पर फर्क इतना है कि समुंदर बहुत विशाल है ते बूंद एक थोड़ी छोटी जही चीज है। बूंद जिवें थोड़े पानी विच थोड़ा होन करके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। जिस तरह एक दरिया पानी का भरिया वगदा है, उदे किनारियां तो पानी उछल के नीचे इधर उधर टोयां विच गड़ियां दे विच जा डिग गया, थोड़ा पानी होन करके बड़ी देर तक खड़न करके उथे डंगर पशु फिरदे हन, ओ पानी बदबू मारन लग जांदा है, जी पैदा हो जांदे हन, होर कई किस्म दे नुक्स पैदा हो जांदे हन उस जल विच, जिसनू कोई पीण तां की उस दे नाल हाथ भी धोना पसंद नहीं करदा। सो क्यों ओ दरिया तो अलविदा होके अगर उस पानी नू कोई महापुरख कोई भला पुरुष उठा के उसी दरिया विच फेंक देवे सुट देवे ता फिर ओ शुद्ध दा शुद्ध है। इसे तरह ही ए जीव आत्मा अज्ञान वश होके परमेश्वर तो विछर जांदी है। हालांकि जिहो जिहा परमेश्वर दा सुभा है सत चित आनंद एहो जिहा ही एदा है, पर उस तो अज्ञान वश होके विछड़ के इनू अनेक दुख तकलीफां आ चिमड़ दिया हैं, आद व्याद उपाद आ चिमड़ दे हैं, आशा तृष्णा चिंता तिन देना आ चिमड़ दिया हैं, काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंज दूत आ चिमड़ दे हैं। ये कदों चिमड़ दे हैं? जदों परमेश्वर दे होंद तो मनुख दूर हो जांदा है, ते जे कोई महापुरख कृपा करे उस पानी नू फिर दरिया दे विच चुक के सुट देवे परोपकार करे तां फिर ओ पानी फिर निर्मल हो जांदा है। इसलिए हजूर कहंदे हन भाई जपन वालियां दी संगत विच तैनू ही नाम मिठा लगन लगेगा, क्योंकि गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया, होर किसे जूनी विच तू जप नहीं सकदा, एहो ही तेरी बारी है। जपन वालियां दी संगत कर, भले पुरुषां दी संगत कर।

ठंडी ठंडी हवा वाग रही है, तारे चढ़े हुए ने, शहर के विचों दो प्रेमी आए इस जोगी राज दे सामने मत्था टेकया। सामने पई संदोखड़ी विच कुछ माया पाई, थोड़ी दूर हट के बैठ गए ने। थोड़ी देर बाद दो चार होर प्रेमी आए ने, उन्हां भी संदोखड़ी विच पैसे पाए, मत्था टेकया, वो भी बैठ गए ने। ज्यों ज्यों पौ फुटाला हुंदा गया, तीन चार सौ दे करीब लोकां दी भीड़ इस जोगी राज दे सामने लग गई। सारे लोग हाथ जोड़ के बैठे हन, कदों ए जोगी राज अखां खोले, सानू कोई गल सुनावे। इन्ने नूं इन्हां बैठियां लोकां नूं इंज लग्गिया जिवें हवा दे विच कोई सुगंधी खुशबू जिही फैल गई। दो मुसाफिर तुरदे तुरदे आए ने, जिन्हां दे चेहरे ते बड़ी मिठास है, एक खिच है। ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਲਕ ਜਾਪਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ। ਨੌਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ए जोगी राज किवें मन टिका के बैठा है, किवें इहदा मन परमेश्वर दे नाल जुड़े है। उस मालक दा नौकर मुस्करा पिया, मुस्करा के अपने नौकर नूं, हां जोगी राज जुड़िया होया है, पर परमेश्वर दे नाल नहीं, अपनी लोहे दी संदूखड़ी नाल। नौकर पुछदा, लोहे दी संदूखड़ी नाल ओ किस तरह, कौन है मालिक ते नौकर? मालिक धन गुरु नानक साहब ते नौकर मरदाना। हैरान हो के पुछया, ਸੰਦੂਖੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ?

लगे मर्दाने जदों कोई आदमी गोलक विच रुपया पांदा है ते खड़ाक ज्यादा हुंदा ते जोगी राज अंदाजा लगा लैंदा है

गुरु साहबा ने उस वक्त ए शब्द उचारे काल नाही जोग नाही नाही सत का डब थान सट जग भ्रिष्ट होए डूबता इव जग कोई जोग नहीं कोई ज्ञान नहीं कोई सच नहीं इस करके ए सारी दुनिया भ्रिष्ट हुंदी जा रही है ए सारा संसार डूबता जा रहा है कल मैं राम नाम सार ए भाई पखंड छड़ दियो कलयुग दे विच सिर्फ उस परमेश्वर दे नाम ने

साहब जी कहने लगे भाई दुनिया नू कहना है कि मैनू तिना लोकां दी सोझी है क्यों झूठ बोलना है अखी ता मीटे नाक पकड़े अखा बंद करके समाधि ला के लोकां नू धोखा देना है ठगण को संसार सिर्फ लोकां नू ठगण।

पाछे कछु ना सूझे। तेनु अपने पिछे दा ते पता नहीं, संदूकड़ी ता तेरे पिछे पई हुई है। पिछा देखे इस जोगी ने ते सचमुच संदूकड़ी एदे पिछे पई सी। शर्मिंदा हो गए ते गुरु साहब ने कहा, भाई दुनिया नु क्यों धोखा देना है, अपने पिछे पई तेनु संदूकड़ी दा पता नहीं ते दुनिया नु कहना।

कुरान भी पढ़े, कुरान भी पढ़ी, वेदां दा अभ्यास भी कीता, पर बिन नाम हर के मुक्त नहीं कहे नानक दास। उस परमेश्वर दा नाम जदों तक तुसी मन करके नहीं जपोगे भाई तुहानू किसे नू भी मुक्ति नहीं प्राप्त होनी। एक गल नानक ने

भगत कबीर सावदा है। एक सेठ बनारस तीर्थ यात्रा वास्ते गया, तीन कुटिया बनिया सन, उन्हां कुटिया दे कोल गया, एक कुटिया दे विचों आवाज आई, नारायण। ये बड़ा खुश होया क्योंकि नारायण परमेश्वर नूं कहा जांदा। दूसरी कुटिया विचों आवाज आई, दामोदर। दामोदर भी भगवान का एक नाम है। तीसरी कुटिया विचों आवाज आई, बिंद्रावन। ते बिंद्रावन कृष्ण भगवान जिस जगह खेडे, ए सेठ बड़ा खुश होया। उन्हां तिन्हां कुटियां दे विचों एक एक साधु बाहर निकले, जिन्हां चिट्टियां धोतियां बन्नियां ने, गलां विच माला, हाथ विच माला, ते एक हाथ विच चिट्टा लिशकदा होया लोटा फड़े। ए तुरदे तुरदे इस सेठ दे कोल आए ने। इस सेठ नूं गली बाती जंगल विच लै गए ने। उत्थे जाके इन्हां तिन्हां साधुआं ने जो कुछ सेठ दे कोल सी ओह खोलिया। इस सेठ नूं जानू मारन लगे ने, पर किसे तरह ए सेठ अपनी जान बचा के जंगल विचों भज निकलिया ते कबीर साहब दे घर चला गया। एदे पाटे कपड़े देखे ते कबीर साहब कहन लगे, भाई की गल है, तेरा बहुत बुरा हाल है, तेरे कपड़े पाटे नहीं। कहन लगा कबीर साहब, मैनू तीन साधुआ ने लुट लिया, मैं तां संत समझे, पर उन्हां ने मेरी सारी माया खो ली, मैनू जानू मार देन लगे सन, पर बड़ी मुश्किल अपनी जान बचा के मैं उथों भजे। ते कबीर साहब कहन लगे, भाई वह संत नहीं, पता है वह कौन ने? कबीर साहब जी अपनी बाणी विच उन्हां बारे बयान करदे।

मैं ता मथा टेके कि ए ता पहुंची हुए संत ने। ते कबीर साहब कहन लगे भाई ए उन्हां दियां गुप्त बोलियां ने जिन्हें क्या नारायण उन्हें तेनू देख लिया ते उची सारी अपने साथियां नू क्या नारायण मतलब के कोई बंदा आया ओदी आवाज सुन के दूसरे ने क्या दामोदर के जेड़ा बंदा आ रहा है एद कोल माया भी चंगी लगदी ते तीसरे ने क्या बिंदरा बन वो कहन लगा कोई नहीं आ जान दियो जंगल विच ले जा के इनू जानू मार के ते लुट लवांगे ते ओ सेठ कहन लगा कबीर साहब पर इना दा पहरावा एडा सोना ते काम इन्ने माड़े ते कबीर साहब जी फिर अपनी बाणी विच इना लोकां बारे इम बयान कर

के भांडे जेड़े ने चंगी तरह मांज मांज के चुले ते रखदे ने। काठी कहंदे ने लकड़ा नूं, जेड़ियां लकड़ा जंगल विचों लियांदे ने, उन्हां लकड़ा नूं गंगा दे पानी नाल धो के फिर सका के बालदे ने। सुचता इन्नी रखदे ने

बसुधा खोद करे तोय चूले के धरती खोद के धरती दे विच चूल्हा बनांदे ने, लकड़ा भी धो के बालदे ने, पर उस तरह सारे मानस खावे जे इन्हां दा वस चले ते जिंदे इंसान नू मार के खा जाण।

अभिमान दे भरे हुए ए आप ते डुबदे ने सगल कुटुंब डुबावे अपना सारा कुटुंब अपना सारा खानदान ए डूब लेंदे ने।

गंगा किनारे बैठे सन। इन्हां दे सामने एक होर संत बैठा सी समाधि लगा के। कोई धनी आदमी आया, गंगा दे पार जाना सी, बेड़ी दूसरे पासे सी, इस वास्ते इस पेखी संत दे कोल ए धनी आदमी बैठ गया। गल्लां बातां करदा रहा, बेड़ी आई, ओ धनी सेठ जान लगा अपनी माया वाली वांसली उथे भुल गया। उस पेखी संत ने अपना आसन चुकया, वो माया वाली थैली अपने थले रख के आसन विछाया, चौंकड़ा मार के ते बैठ गया। ते भगत नामदेव

दूसरे पासे जाके फिर वापस आया। उस पेखी संत नु पुछया, संत जी मैं तुहाडे कोल बैठा सी, मेरी माया वाली वां

समझ लिया कि मेनू थैली लुकांदे आ, नामदेव ने देख ले। पेखी संत कहन लगा, सेठ जी ओ जिड़ा नामदेव सामने बैठा सदा पे आए ने, तुहाडी वासली ओदे कोल है। सेठ उठिया ते भगत नामदेव दे गल पै गया, कहन लगा मेरी थैली दे। होर भी दो चार आदमी इकट्ठे हो गए ते सारे भगत नामदेव नूं कुट्टण लग पए। ओ जिहड़ा पेखी संत सी अपना वड्डापण दसण वास्ते अपने आसन तों उठिया, उन्हां लोकां नूं कहण लगा नामदेव नूं मारो ना, जे इन्हें माया वाली थैली चुकी है ते आपे परमेश्वर इनू सजा देवेगा। इन्हें इन्नी गल कही, उधरों एक हवा दा बुला आया, उस पेखी संत दा आसन उड़िया ते थलों माया वाली वासली नजर आ गई। उस सेठ ने ते लोकां ने नामदेव नूं छड़ दिता ते उस पेखी संत नूं फड़ के कुटन लग।

ए पाई काहे को कीजे ध्यान जपना जे तुहाडा मन नहीं जुड़दा ते क्यों समाधियां ला ला के बहंदे हो।

मैं पखंड नहीं करदा। उस परमेश्वर दा नाम जपया उदे नाल मिल गया। ऐ भाई तुसी भी मन करके उदा नाम जपो, तुसी भी इना पखंडा

हर जियो निमाणिया तू मान। हे हरी वाहिगुरु, तू निमाणिया दा किवें मान है? पातशाह कहिंदे ने आड़ दम को छिपरो, अद्धी कौडी दा छिंबा होयो लखीना, लखां दा हो गया। पर किवें? पाई साहिब भाई गुरदास जी कहिंदे ने

स्वामी रामानंद जी के चरणों की छोह हुई। हुण स्वामी रामानंद जी ने कहा पता नहीं कौन पे है, इन जापदा है जिवें कोई मृतक शरीर है। ते साध संगत चरणा दी छोह लगन दी देरी सी, अज अपने मुखो एक बचन किया, उठ राम के लोका राम को। बस इनी गल कहण दी देरी सी, कबीर ने माला फड़ ली, राम राम राम शुरू है। ते साध संगत हुण भगती करदे आ, जिस वेले उन्हां उच्चियां जातां वालिआं ने तकिया, हुण मन च ख्याल आ गया कि कबीर दा गुरु केड़ा है, कबीर नू दिखिया किन्ने दिती है, ए माला किवें फड़ के बह गया, ए ते नाम नहीं जप सकदा, क्योंकि उस वेले उन्हां पंडतां ब्राह्मणा ने ए उपदेश दे दिता कि उच्चियां जातां वाले ही नाम जप सकदे ने, छोटी जात वाला नाम ही नहीं जप सकदा। साध संगत हुण ध्यान देना, पुछ कीती तेरा गुरु कौन है, कहन लगा जी स्वामी रामानंद। जो स्वामी रामानंद जी का नाम लिया, कहन लगे ए हो ही नहीं सकता, ओ ते शूदर नू मथे नहीं लांदे, तेनू किवें दिखिया रिड़ती। कहन लगा मेरे ते यकीन नहीं, ते जाके स्वामी नू पुछ। स्वामी रामानंद जी पास आए, कहन लगे स्वामी जी कबीर कदों शिष्य बनाया, करो दिखिया दिती जे। कहन लगे कबीर मेरा शिष्य नहीं है, मैं दिखिया नहीं दिती। कह लगे महाराज ओ ते तुहाडा नाम जप रहे। कह लगे बुलाओ कबीर नू। हुण कबीर नू बुलाया ना, जिस वेले स्वामी रामानंद जी ने एक पर्दा तान लिया, एक पासे स्वामी रामानंद जी ने, एक पासे कबीर है, विच पर्दा है। ते साध संगत मैं पर्दे दा जिक्र कर दिया, पर्दा एक परम है, ख्याल करना, पर्दा एक परम है। हुण वेखो ये परम हटदा किवें। कबीर कण तेनू दीखिया दिती, कहन लगे स्वामी जी अमृत वेला याद करो, उस दिन दा अमृत वेला याद करो, जिस वेले अमृत वेले तुसी चरणा दी छो दे के मैनू अपने मुखो आखिया उठ राम के लोका राम को, ए दिखिया नहीं ते और की है। बोलो राम सिख समझाई, तुसी राम इना दे कन्ना विच कहिंदे हो, मैनू उच्ची आवाज नाल तुसी के, ते मैं राम दा नाम जपन लग पे। कहते ने स्वामी रामानंद जी, कहन लगे पर्दा हटा दियो, गिरा दियो इस पर्दे नू। ओ भाई जिन्हां नू मैं नाम दिता है, ओ अज तक इस अवस्था विच नहीं पहुंच सके। स्वामी रामानंद जी कहिंदे ने कबीर नू ते मैं अचनचेत राम दा नाम दिता है, पर इहदे हिरदे विच इंज नाम वस गया है। कहन लगे कबीर सब तो उच्चा हो गया है,